0: दिनका कामो टाटल भयाल बक निसेक जाए मैं तो बिहान नहीं खेत जाए तो ना खाए
1: बाबा लोई छाता फेले जाओ खेत से लौटा बेर महाकर्रा घाम रखा
0: ए का बिस्नु का बिस्नु कलर त छा त बिसाइ टु का हु लान त छाता ओहो मै त एक पानी बोटलिन जीवन जलझन मिलाइ बिस्नु
1: तु बिस्राजी ठकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रख्नु बाबा बेनसु पानी भरि सक्कु पिहना पस्ना नसे निकाल्क जो सुखा

0: पटवामही अभ्यांका काम दिनका आराम
1: हात बिहान काम दिनका आराम
2: गर्मी मौसममा लू चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकी कपार छोपनेगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जूर ढरक लाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: खबर प्रतिमा प्लास्टिक एन्ड ट्रेडर्स नयाँ व्यवस्थापनका साथ पुरानो ठाउँदेखि किसान एजु नजिकै सरेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ हाम्रो यहाँ भान्सामा परेको नि सम्पूर्ण किसिमका सामानहरू उपलब्ध छन् काँच तामाका भाँडाहरू कुर्सी टेबल ड्रम डार्किन लगायत प्लास्टिकका सामानहरू पाइनेका साथै सम्पूर्ण किसिमका भाँडाहरू सुखद मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस् प्रोपराइटर सरस्वती शर्मा सम्पर्क नम्बर 98589453 प्रतिमा प्लास्टिक एन्ड ट्रेडर्स गुलरिया रोड किसान एजु नजिकै भुरीगाउँ बजार बर्दिया
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैँ बाज्ने